0: की जय। धन्यवाद
1: वृंदावन बिहला लखी जय। सो एज़ यू मेंशन वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव नॉट जस्ट एट पंडित्स बट एट द्विज एट ब्राह्मण एंड दिस कम्युनिटी माय डियर फ्रेंड्स इज ट्रूली ब्लेस्ड फॉर हैविंग एट पंडित्स इन अ वन मंदिर इन वन नाइट। जय श्री राम। So as we have come to the end this evening, Karao Jao, as we stand for closing our tea and prayer to Bhagwan as we conclude tonight's devotional exercise.

राजा रामचंद्र की, महापति महादेव की, प्रेम से बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। सब बहुत बैठे, मे प्लीज हैव योर सीट्स। आरती प्रसाद पटरामृत।

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है उसमें न जाने कितनी चीजें हैं जो हमें कदम कदम पर शिक्षा देती हैं। उदाहरण के रूप में एक वृक्ष को ही ले लीजिए। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, धूप में खड़ा रहता है और लोगों को छांव देता है। आप वृक्ष को पत्थर मारिए तो वो बदले में फल देता है। एक नदी है, अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उस पानी से न जाने कितने हजारों लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। तो हमें अपना जीवन एक वृक्ष की भांति बनाना है, एक नदी की भांति बनाना है जो परमार्थ के कार्य आए।